रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है, मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

दोस्तों, रेडियो चुनाव के हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्त अर्चा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो। जी हाँ, रेडियो चुनाव और अभी बहुत कुछ यानी इंफोटेनमेंट का डोज एवरी रोज। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सपर्ट। साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया में किसी भी कोने पर।

0: 코너요.
1: 라디오 진아, 라디오 진아. Weather update, weather update.
2: On its frequency, her good girl can radio channel her brother. She go weather.
1: Radio channel, radio channel. Weather update, weather update.
2: जी हाँ, क्या है आज का मौसम का हाल? चलो बताते हैं तुमको वहाँ के लाल.
1: Radio channel, radio channel. Weather update, weather update.
2: जी हाँ, गर्मी पूरी फील करेंगे ही एंड शी, क्योंकि आज का वेदर है 33.
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट 33 डिग्री
2: सेल्सियस होने वाला आज का मैक्सिमम, और पूरा दिन सूरज चमकेगा. हाँ, दोपहर होते होते देर आर चांसेस के बीच में सूरज के आड़े आ सकते हैं बादल, लेकिन सूरज रहेगा चमकता, क्योंकि बादल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. सूरज फायर नहीं, वाइल्ड फायर बन के चमकेगा. यू इंडेक्स अभी के लिए 6 पर, 54% ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:26 पर, आज का सनसेट होगा 7:47 पर.
1: रेडियो चिना, वेदर अप.
2: व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? मजेदार शो व्हाट्सएप. मैं हूं जॉक्स. व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर. 8899-04904 تو ہیکو کال کرت واٹس ایپ یا ہیکو کرت ٹیکسٹ میسج. اپنی بات ہم تک پہنچائے, ہر دل کی دھڑکن کو زوروں سے دھڑکائے میری جان سریا ہٹ. ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار دھڑکاتے

0: हाय मैं हूँ आरजे सिंह.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की.

0: जिजूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
2: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तभी व्हाट्सएप पर है। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो भी रहता है वायरल। ये वायरल होना भी अजीब चीज है, किसी को बना देता है तो किसी की बनी बनाई मिटा देता है। अब जो भी है जैसा भी है वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। जी हाँ, आपने जादू देखा, वो वाला जादू नहीं जहाँ पर ओम फट करके कबूतर को टोपी से निकाला जाता है, जादू मूवी वाला जादू। लेकिन जो मूवी दर्शाती थी एलियन, अब वो एलियन आ चुका है रियल में। एक बंदा जो इंडिया में दिखाई दिया जिसका वीडियो रहा वायरल, कह रहा है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि मून से, मतलब चांद का वासी है। पिछले 3 साल से पृथ्वी पर रह रहा है और सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है इस पर मिक्स कमेंट्स हैं। अब ये जो बंदा है खुद को चांद का वासी बताता है और कहता है कि धरती पर पिछले 3 साल से हूँ। इंसान जैसा दिखने वाला ये शख्स, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो बात है, मतलब हो सकता है मेंटली चैलेंज्ड हो या ऐसा कुछ हो, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम किए जा रहे हैं। अब ये चक्कर हो सकता है कि भैया वायरल हो जाए और

सफर आ जाए, अब आ तो चुका है फिलहाल। एलियन को छोड़िए, गाने पर गौर कीजिए। जी हाँ, YouTube पर इस ट्रेंडिंग हर कश्मीरी की जबान पर इंडिया में और आउटसाइड इंडिया तारीफें पा रहा है। दिस ट्रैक इज नोन एज हूर। कोक स्टूडियो भारत की पेशकश, जिसमें फीचर किए गए हैं कश्मीर के आर्टिस्ट। और इस फ्रीक्वेंसी पर हूर, ये ट्रैक सभी सुनने वालों के लिए, इट विल बी फॉलोड बाय अदर ट्रैक्स एज वेल। तो मेरी जान, कहीं नहीं जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, दिल खोल कर रेडियो चला रहे बजाना। मैं हूं जॉक्स, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे।

0: to Zeus.
1: Going out.
2: Zeus.
3: But gee, Radio Tenor की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए. लेकिन टॉपिक बताने से पहले कुछ दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हैं. जी हाँ, उनका प्यार मोहब्बत सवाल जवाब टॉपिक से रिलेटेड बातें सब पहुँचाएंगे आप. रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप भी हमारे साथ जुड़े. 8899904904 इज द नंबर. आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. हमारे साथ कुरत जुड़ी हैं, लिखती हैं सोपोर से हूँ, टेक्स्ट बहुत बार किया कोई रेस्पॉन्स नहीं. देखिए, जब आप आरजेस का नाम सही से नहीं

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

στο Radio Tuna 90.4 FM από την Joy Karema Star Show. What's up? What's up, show me ugly pages, TikToks and Bollywood news. बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें. मैं हूं जॉक्स, सिटी हट, धड़काते रहो.

0: to Zeus. Kona, jo.
1: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
2: Dosto, Radio Channel 90.4 FM Mazdar Show. What's up aur what's up show mein Bollywood News.
1: Bollywood News.
2: Bollywood News mein aaiye baat karte hain Padma Shri और माधवन की, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरेक्शन में रिवील किया कि जब वो बॉलीवुड के दीवाने थे तो एक्चुअल में दीवाने थे जूही चावला के। उन्होंने कहा कि जब भी मैं स्क्रीन पर जूही चावला को देखता था तो मेरा एम बन जाता, भैया इनसे मैंने कभी शादी करनी है। अगर हम आज की भाषा में बोले तो जूही चावला क्रश थी आर माधवन की, और उन्होंने कहा कि कयामत से कयामत जब देखी तो सच में दिल में कयामत सी हो गई। रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, अगला सेगमेंट टेक टॉक्स, कुछ गाने आर माधवन पर फिल्माए हुए। और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक ज्यूस, जो का हिस्सा बनने के लिए डीएम करें इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा जॉक ज्यूस के नाम से।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

आए, आपने बुलाया और मैं चली आई साथ रहने के लिए बराबर 2 बजे तक। 91.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीच का मंडे यानी कि फंडे और बहुत कुछ बाकी है दोस्त।

बेस ऑन रिपीट शो चुनाव रिपीट आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक फन तो है ही और फन क्यों नहीं होगा। देखिए मंडे है और बहुत सारों को लगता है कि मंडे बिल्कुल बेकार सी शुरुआत होती है, बट ऐसा नहीं यार। सच में अगर देखें ना तो हम अपने माइंड को प्रिपेयर करें और ऐसा सोचें कि नेक्स्ट संडे आने वाली है, सैटरडे है, तो कहीं ना कहीं हमें वो कहते ना कि हमारा मूड एलिवेट हो जाता है और हमें एहसास होता है कि सच में इंतज़ार बहुत ही खूबसूरत होता है। अब कुछ लोगों को इंतज़ार करना पसंद नहीं है, कुछ लोगों के लिए इंतज़ार बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि वो कहते हैं कि असल में जो वाइब है ना, जो हमें किक है ना, वो उसी से मिलती है। बट अब मुझे नहीं पता है वो चीज़, मुझे तो ये पता है कि मेरी पूरी वाइब और ड्राइव मेरे साथ है। सो आई एम एक्साइटेड टू नो क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात, और क्या किया आपने, आपका वीकेंड कैसा रहा, वो आप मुझे बताएंगे शो का हिस्सा बनकर। देखिए हम मिस मुझे कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैंने तो बस ये ठान लिया था कि 12 बजे आएंगे और आपसे बतियाएंगे यानी बात करेंगे। वैसे अब मैं आ गई हूं आपसे बात करने के लिए, आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। 8999-0409-04 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और बैक टू एक्स सॉन्ग्स को देखिए। जी तो मेरा भी नहीं लगता है, तभी तो मैं फटाफट आ जाती हूँ। 12 बज गए होते हैं और पता ही होता है कि चुनार बीस बीट्स ऑन रिपीट हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM बना रहा है, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats up, enjoy kar rahe on your radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baate to ho rahi and we are talking about National Highway of Jammu Kashmir. तो क्या है आज का अपडेट, तो क्या चल रहा है नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर पे, आपको बता दें कि बहुत सारे ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, बट एक एडवाइजरी जो हर एक ट्रैवलर को दी गई थी एंड दैट वाज कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे से, यानी कि आप सुबह से लेकर बराबर 7 बजे तक हैवी जो मोटर व्हीकल्स है वो 7 बजे तक ही उन्हें अलो किया जाएगा, और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको 11 बजे तक अलो किया जाएगा। और ओवरऑल जो जो अमरनाथ जी यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई से, तो उसकी वजह से जो रात के टाइम में नहीं अलो किया जाता है, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, आपको अपना प्लान बनाना है तो आप दिन में प्लान बनाएं, आप सुबह से 7 तक या सुबह से बराबर रात के 10 बजे तक ही आप ट्रैवल कर सकते हैं जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू। उसके अलावा भी आप ट्रैवल कर रहे हैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना, ये तो हम सबको ही पता है, बट उसका पालन करना भी ज़रूरी है, यानी कि हम सिर्फ बोलते हैं फिर 25 ट्रैफिक पुलिस पूछा 25 लगा सीट बेल्ट, बट दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि अगर हम खुद को वो चीज़ समझाएंगे नहीं, वो चीज़ खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरों को क्या दिखाएंगे। सीट बेल्ट हमारे लिए है, उसे लगाना, ड्राइविंग जो हमारा SOPs है तो ट्रैफिक SOPs

इसको हमने फॉलो करना है, एंड ऑल्सो हमने गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि हो जाती है हर बड़ी में गड़बड़ी। देखिए कार में आपका कोई भी साथ है, दिमाग सही रखिए, क्योंकि वो तो नहीं आएगा बचाने जब हमारी गड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हीरो बनिए, जीरो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के लिए है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बखूबी निभाना है। हमें टीम रेडियो चुनार एंड वी केयर फॉर यू, और हम इस चीज़ को निभाते भी है, आपका साथ देते हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। 8 8 9 0 4 9 0 4 पर टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार वीज का हिस्सा बन जाए।

Beats with Harsh Diva only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

खबर ऑनलाइन और खबर ऑनलाइन में स्वागत तो मेरा हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचाते हैं। तो क्या है आज की ब्रेकिंग न्यूज? मैंने बोल चुके खबर विस्तार से। तो खबर ऑनलाइन में हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमको सिखा रहे हैं। देखिए भैया जी, आप तो काफी सिखा रहे हैं। तीसरी शादी भी आपकी हो चुकी है। आज की खबर, बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ आमिर खान की बात। जी हाँ, आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली है। 5 जून यानी कि कल उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में पाली हिल में उन्होंने शादी की है गौरी स्पाट के साथ। और गौरी उनकी बचपन की दोस्त है और उनका डिवोर्स हुआ था 2021 में। और उसके

0: एक गैप के बाद अभी इन्होंने शादी कर ली, यानी कि 2 साल डेटिंग के बाद फाइनली आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली है। और फैंस का कहना है कि आप देख लीजिए है कि एक तरफ से हैं आमिर खान के चहीते दोस्त भाई जान, जो कि शादी का नाम तक नहीं लेते क्या वो आने का नाम नहीं लेते, बट आमिर खान ने तो 3 शादियां कर ली है। यानी कि देखिए 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, यानी कि आमिर खान का मन है कि प्यार जब भी हो और सच्चा हो तो शादी कर लेनी चाहिए। और ये जो सर्मनी है इसमें उनके जो बच्चे हैं वो भी शामिल थे, बहुत खुश नज़र आए, दोनों खुश नज़र आए। तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है कि आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली है, तो शादी क्या सीजन तो है कश्मीर में, आपका क्या है वे वे? 8999-0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिनार बीट का हिस्सा बन जाइए।
1: अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी, सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

देखिए मैं तो आपकी संग है और बराबर 2 बजे तक हूँ एंड बात भी हो रही है वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे के बारे में, मैसेज अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के बारे में बात हो रही है। अभी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999904904 पर आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बात वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए और नंबर तो वो है जो आपको और हमें जोड़ के रखता है, तो बन जाइए शो का हिस्सा। ढेर सारी बातें, मस्ती मजाक, फन और सब कुछ होगा। आप सुन रहे हो हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा। आज ये असरा।

आयशा की रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड. आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो टनल 90.4 FM. एक ऐसा टाइम जब आपकी रिक्वेस्ट पूरी होती है, और इस टाइम में आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है इस टाइम का. ट्राई करना है कि अपनी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी पहुँचाए, क्योंकि वक्त बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है, दूर जा रहा है, और ये मौका आपको अब कल मिलेगा. यानी अगर आपने अभी रिक्वेस्ट नहीं की तो फिर आप 2 बजे के बाद तो शो नहीं चलेगा म्यूजिक ऑन डिमांड, बल्कि हंगामा स्टार्ट होगा. फिलहाल के लिए यहाँ पर आयशा की ये रिक्वेस्ट आई है, बोलिया आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8999904 पर. टेक्स व्हाट्सएप कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड का.

देखिए जुनून दीवानगी हर तरफ तो है ही, अब प्यार भी हमारा इतना खास है ना कि जब भी घर जाने का वक्त आता है बहुत ही बुरा लगता है। और रंगों में वो कहते ना रंग डालने के लिए, अभी मैं कहूँगी कि इस रंग में तो रंगने के लिए अभी हसरा आएगी आपके साथ। 2 बजे बराबर शो हंगामा स्टार्ट होगा, फुल ऑन ड्रामा, ढेर सारी बातें। पर मैं जा रही हूँ और मैं आपसे कल मिलूंगी बराबर 12 बजे, ढेर सारी बातें करने के लिए आऊँगी। लाल के लिए दुनिया बदल चुकी है, चेंज द वर्ल्ड, एंड मैंने भी चेंज किया है अपना मूड अभी के लिए। हाय, दिल पे पत्थर रख लिया है कि कल अब मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें आज की तरह मेरी पूरी वाइब ट्राइब मेरे साथ होगी और क्या ही चाहिए। हर तरफ तो होगा ही, वो समय अलग होता जब आपकी और मेरी शुरुआत होती है 12 बजे और ढेर सारी बातें होती है। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर मुझ तक कुछ पहुँचाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू भी पहुँचा सकते हैं। रेडियो चुनार 90.4 FM आप फॉलो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए कि हम कैसा कॉन्टेंट आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा कैसे करने की, आज दीवा आपको मिलूंगी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर, वहाँ पे भी आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई टिप्स आपकी या मुझ तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं ज़रूर पहुँचाएगा। मैं लाल में जा रही हूँ, आप अपने ख्याल रखिए, कल मिलते हैं बराबर 12 बजे, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि यह है हर दिल की दरगाह।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज ही असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हेलो वन। हमारा इरादा तो यही है कि दो से चार हो हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ यही मिलता है। पार्टी की बात सुनते ही वीकेंड याद आता है और वीकेंड तो चला गया। कैसा गया आपका वीकेंड हमें भी बताइए। 8899-04904 नंबर और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अभी अभी शुरू हुआ है, बराबर चार तक चलेगा। एंड स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर एंड स्टे हॉट।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. और जैसे कि अभी कुछ देर पहले शो शुरू हुआ है और आते आते हम किस चीज के बारे में बात करते हैं. जी हाँ, बात करते हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, आखिरकार क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, चाहे एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है या है इंस्टाग्राम.

और आज जिस बारे में बात हो रही है, दैट इज अ टर्म रिलेटेड टू जेन अल्फा, जो कि नई जनरेशन है जिनका तो जेन जीज को भी समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे होते हैं. बट एक ऐसी टर्म जिसे हम कहते हैं 6-7, और इसका कोई मतलब नहीं है. जी हाँ, ये बता दूं मैं आपको कि इसका कोई भी मतलब नहीं है. पर आज की डेट की बात करें तो टुडे इट्स द 6th of July, यानी कि 6-7-2026, और अभी पूरे इंटरनेट पे बस बिना वजह यही चीज ट्रेंड कर रही है, दैट इज 6-7. बिल्कुल 6-7 का मतलब क्या है ये तो मालूम नहीं है. 6 is 6, 7 is 7, बट वॉट इज 6-7? अब देखिए, अगर आपको मालूम है तो बताइए. अब जितनी मेरी रिसर्च है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ फन थिंग टू डू. मैं वहाँ स्टार सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन।

टेक्स्ट व्हाट्सएप और बन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सफर में आपका साथ बहुत जरूरी है. और कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में. एंड मोर इम्पोर्टेंटली हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और आज भी एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की डिवोशन का हिस्सा है. मैं मुस्रा सुनता रही है रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

हाय, मैं हूँ आसरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज का टॉपिक इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, फुल ऑफ डिवोशन। और आज हम श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। 3 जुलाई से ये पावन, ये पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है और हम इसके एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या लोगों का डिवोशन है, कैसी ये कहानी, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये शुरू हुई है। मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हाय मैं हूँ अस्ताउद, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज श्री अमरनाथ जी यात्रा। उसके बारे में और भी बातें होंगी, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं है, क्या डिवोशन है, क्या स्पिरिचुअल गाइड है। बट अभी के लिए दिस इज़ जस्ट एन अपडेट, दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ध्यान से ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक एसओपीज को फॉलो करना ना भूलें और अपना ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

beats with Harshadeva only on Radio Chennai 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: चला चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

पसीना लारी तू, पर सूट रेशमी गिर चले तो भारी भीड़ लगारी तू। एक बार चल गल पूरी सौ, कर दू रंग मेरा देख देख दूरी नौ। दर तू फिर ना बोलगी, तेरा संग माड़ा, तेरा संग माड़ा, तेरा संग माड़ा।

0: বেবে যাবে। তোমারই মেজর
1: লোকটা রুমে রেখে

0: तब था लेकिन अब सब बोलेंगे
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम
2: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Okay, 5 minutes.
1: Okay. Ton mari?
0: Major.
1: लगता है रूम में रह गया।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harsh Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज़ियूस,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।
2: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: अच्छा कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात
2: लेकिन
1: एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ,
1: इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: रहा यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट वैकेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।